0: धीमि ततक झम ततक झुणु तक ध्रुगुता तत झुणु की टतक
1: धीनी दा धीनी ता धीनी दा धीनी